0: एक मिनट इधर आऊंगी, मेरी गल सुनोगे?
1: लेता एक केरी गल है, आ गया मैं। ओ की गल हुई?
0: तेनू शर्म नहीं आती? तड़के दे 4 बज के रज्जा नहीं पी पी के

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: जी सजनों, तुसी सुनिया है सॉन्ग, वेलकम सॉन्ग। कैसा लग गया तुहानू? सानू ते जेड़ा लग्या सी तुहानू दस ही दित्ता, हुण तुहानू एक ऐसा लग्या ए तुसी वेलकम सॉन्ग। कैसा लग गया तुहानू? सानू ते जेड़ा लग्या सी तुहानू दस ही दित्ता, हुण तुहानू एक ऐसा लग्या।

0: Yang Yingru of China.
1: Friend of the show.
0: Friend of the show. She's one of the 900 that listens. She's big over. Shout out to Yang.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: From Wolston to West End, from Milnbrook to Marchwood, this is Awaz FM.

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWEF and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम

0: लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया, मुझसे और बाबा से जिक्र तक नहीं किया, कब से चल रहा है ये सिलसिला।
1: मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो, कोई इतना चार्मिंग इतना अट्रैक्टिव भी हो सकता है कि पहली नजर में अपना दीवाना किसी को बनाए।
2: कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो और उसकी चार दीवारी में मैं तुम्हें कैद करके रखूं।

0: मेरे जीते जी तो क्या मेरे मरने के बाद भी जरबाप तुम जैसी उड़ंदीदा से शादी नहीं करेगा?
1: इज्जत के मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बाप के साथ खड़ी मिलूं।
2: लेकिन मेरा दिल किसी की जागीर नहीं है जहाँ कोई और फैसला करेगा यहाँ किसको बसाना है किसको नहीं।
3: तुमने तो हद कर दी मकार अली, अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
4: मैं अपनी बेटी को शानो शौकत रुपए पैसे के मकबरे में दफन

0: This is Shweta Subram and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर. लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में. स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ.
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Awaaz FM.

0: लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं दुनिया की आवाज नहीं सुनता हूँ, सुनता हूँ तो सिर्फ अपने दिल की आवाज।
1: सुनो दिल की आवाज।
2: लापरवाही।
3: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Sahara Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, where heritage speaks volumes in the form of music. Combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की club every Sunday 6 to 8 p.m.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every 5 road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
10: This is Shweta Subramanian and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर ले। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 p.m.

0: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: During the break, Simon's got up on the shelf and found what I thought was some sort of green pillow or cushion. It is, in fact, a giant leprechaun's hat.
4: The things you find in the Awaz studio.
3: Now we've got this hat. Tremendous. Yes. Ali's on his way.
4: He's come to take my hat off me.

0: खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
1: So what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
1: Big deal, dude.
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
1: Oh man.
2: मैनू नी चाहिदा कोई राजा,
1: चल झूठी
2: नारा छे दी यारी धीरे, मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा,
1: हाय चुकला रब्बा मैनू,
2: मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: I know from the public reaction that we've been greatly missed, Simon.
4: We certainly have, that's for sure.
3: Who else are you going to listen to?

0: खेल खेल ये आ जाएगा।
1: दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तक तेरी गिर दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तक तेरी

जान जान का बिहान हाल, जान जान नहीं एक सवाल है, एक सवाल के सौ जवाब है।

0: चाल का न कोई चाल चलन है, दो गलापन एक ही नियम है, अनेक एक पे एक है भारी, एक अनेक में कैसी यारी, एक एक का एक एक होता है, दो एक से एक दो मिलता है, दो एक से एक दो मिलता है। अकल नहीं से जी से खेल, जीवन भी जीना आ जाएगा, खेल खेल खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा।
1: We even left a bit of paper. It's that taskmaster Ali, the station manager, cracking the whip, saying it can't just be you two talking nonsense all week.
2: That's right, yeah.
1: You need to get someone else to talk nonsense with you.
3: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
4: Radio, the medium that's now large.
5: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
6: एक पल की लापरवाही।
7: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Awaaz FM is supporting local radio.
3: Local radio.
2: Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Your number one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music.
5: Oh, yeah.
4: We are your number one radio station. We only play the hits.
6: Awaaz FM 99.8.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: This is Natalie DeLuccio, and keep listening to Awaz FM.

0: While driving, drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: चलते हैं पाकिस्तान. लाइन पर हैं अजमल शोबी.
10: अस्सलाम वालेकुम.
9: वालेकुम सलाम.
10: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
9: हां जी शुक्रिया.
10: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूमात उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से. मेहरबानी तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ. बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं. तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और ओके बनता है.
9: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
10: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
9: थैंक यू वेरी मच.
10: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा. और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे. इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे. बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
9: थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.
10: आई लव यू ऑल.

0: Awaz FM local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।

0: दोस्तों, ये साल देखो कितना तेजी से, साल क्या टाइम इतना तेजी से गुजर जाता है और उसके बाद पता भी नहीं चलना साल फिर गुजर जाना है। फिर क्रिसमस के तैयारियां शुरू हो जानी है। खुदावंद की आमद बहुत नजदीक है, उसकी तैयारी करें और अपने दिलों को उसके लिए तैयार करें। तो आइए हम कलाम मुकद्दस की आयत सुनेंगे, पहले उर्दू जुबान में और उसके बाद फिर पंजाबी जुबान में। तो मैं सिस्टर सरीना से दरख्वास्त करूंगी कि उर्दू में कलाम मुकद्दस की तलावत करें।
1: पाकलाम के जिस हिस्से पर आज तलावत होगी वो पाया जाता है पालूस रसूल का खत रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 12 आयत में पढ़ूंगी। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक और शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को इतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता और खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही के मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफसल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इतकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तुम अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। आमीन।
0: आमीन। बहुत शुक्रिया। हम एक गीत सुनते हैं, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंत की शिफा आती है, खुदावंत की शिफा आती है। खुदा का पाक रूह हम सबको हदायत दे और हमारी मदद करे और हमें अपने साथ साथ चलने की तौफीक दे। बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं।

0: तो आइए कलाम मुकद्दस को पंजाबी जुबान में सुनते हैं। तो उसके लिए डैनियल से दरख्वास्त करूंगी कि हम सबके लिए कलाम मुकद्दस की तलावत करें।
1: मैं पवित्र बाइबल चो रोमियो की किताब उसका 14 बाब उसकी पहली आयत को 12 आयत तक पंजाबी च पढ़ांगा। तुसी कमजोर विश्वास वाले आदमी का आदर करो, उसके नाल उस दे निजी विचारों बारे बहस ना करो। एक आदमी है, वो विश्वास करता है कि वो सब कुछ खा सकता है, पर दूजा आदमी अपने कमजोर विश्वास के कारण केवल साग भगती ही खाता है। वो आदमी जो सब कुछ खा सकता है उसनु तुच्छ न जानो। जो हर एक चीज नहीं खा सकता, इसे तरह वो जो खाद साग भाजी ही खाता है उसते दोष ना लावो। जो सब कुछ खाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसनु भी स्वीकार किया है। तो किसी दूजे दे नौकर ते दोष लाने वाला कौन होता है? ये उस नौकर दे स्वामी दा काम है कि वो देखे कि वो नौकर ठीक काम करता है या गलत। वो ठीक ही काम करेगा क्योंकि प्रभु उसनु इस योग कर सकता है। एक आदमी है, वो समझता कि कोई एक दिन दूजिया दिना नालों अधिक जरूरी, पर दूजा सब दिना नू इको जा समझता है। हर एक नू अपने मन दे विचारा ते पक्का भरोसा होना चाहिए। वो जेड़ा किसे दिन नू जरूरी समझता है, वो प्रभु दे लई ही समझता है। इस तरह वो जेड़ा कुछ भी खांदा है, वो प्रभु दे लई खांदा है, क्योंकि वो इस दे लई परमेश्वर नू धन्नवाद देंदा है। पर जेड़ा कुछ चीजा नहीं खांदा, वो भी प्रभु दे लई ही नहीं खांदा, क्योंकि वो परमेश्वर दा धन्नवाद करदा है। साडे विचों कोई भी ना ता केवल अपने लई जीवंदा है अते ना मरदा है। जेकर असी जीवंदे हां तां प्रभु दे लई, अते मरदे हां तां प्रभु दे लई मरदे हां। सो चाहे असी जीवंदे रहिए जां मरिए, दोहां हालतां विच ही असी प्रभु दे लई हां, क्योंकि मसीह इसे लई मरे अते जिंदा भी होए कि ओ जीवंदियां अते मुरदियां दोहां दे प्रभु ठहरन। मित्र, जेकर ए गल है ता तू अपने भरा ते दोष क्यों लाउंदा है, जां तू उस नूं तुच्छ क्यों समझदा है? क्योंकि सानू सब नूं परमेश्वर दे न्याय वाले सिंघासन दे सामने खड़े होना है। इस तरह धर्म ग्रंथ कहंदा है, प्रभु दा वाक है, मैं जीवना हां, मेरे सामने हर कोई गोडे टेकेगा अते हर कोई मैनू अपना परमेश्वर स्वीकार करेगा। सो इस तरह साडे विचों हर कोई अपना अपना लेखा परमेश्वर नू देवेगा। आमीन।
0: आमीन। बहुत शुक्रिया। हम खुदा उनका बड़ा शुक्र करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए जो हम तक पहुंचता है, और उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें अपने दिलों को त्याग करने की जरूरत है। आइए एक और गीत सुनते हैं। छू मुझे छू खुदा, रू मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। जब खुदा यीशु मसीह का पाक रूह हमको छू लेता है तो हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। पुरानी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है, और लोग दूसरे जो हैं वो देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी तब्दीली आ गई है। तो आप कोशिश करें कि खुदावंद के रूह को अपनी जिंदगी में आने दें, तो आप बिल्कुल एक नए इंसान बन जाएंगे। तो आइए गीत सुनते हैं, छू मुझे छू खुदा, रू मुझे छू।

0: आपके लिए एक ऐलान है, और वो ये है कि संडे की इबादत 10:30 बजे शुरू होती है। हम हर संडे नए लोगों को देखते हैं, और उसके उनको देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि नए लोग आते हैं, इबादत में शरीक होते हैं, उनकी जिंदगियां भी बदलती हैं। और आप भी अगर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, और जो भी मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह ताकत रखता है, वो हर इंसान के सिचुएशन को बदल देता है, वो जिंदगियां तब्दील कर देता है। तो आप आए और खुदावंद से बरकत पाएं और इस मौका से फायदा उठाएं। इसके अलावा ट्यूसडे मंगल के दिन सुबह 10 से 12 बजे तक चाय का इंतजाम होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। रेगुलर लोग तो अक्सर ही आते ही आते हैं, हर दफा आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कभी जैसे ईस्टर और क्रिसमस के दिनों में जब हम बंद कर देते हैं तो वो पूछते हैं कि क्यों बंद कर दिया, हमें अच्छा लगता है कि हम वहां पर आए। तो आप आए, और किसी दूसरे को आप जानते हैं जो इस मौका से फायदा उठा सकता है, तो उनको भी साथ लेकर आए और खुदा मुझसे बरकत पाए। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने अरसे शुक्रगुजारियां और अपनी जरूरतें खुदा उनके सामने पेश करें, और उसके लिए मैं नकीना से दरखास्त करूंगी कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी नकीना,
1: आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ मांगें। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो तू अपने बच्चों को देता है। खास तौर पर हम आज के दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद, तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि आज सुबह जितने भी लोग अपने कामकाज के लिए, जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए और जिस भी काम के लिए अपने घरों से निकले हैं, ऐ खुदावंद तू उनके साथ साथ होना, उनको कामयाबी बख्शना, वो जहाँ पर भी जाएं उनकी निगरानी और हिफाजत करना, आज तो उनके साथ साथ चलना, ताकि ऐ खुदावंद वो तेरी हजूरी को महसूस कर सकें और जान सकें कि तू ही जिंदा खुदावंद खुदा बाप है, जो सबके साथ चलता है, जो सबकी निगरानी और रहनुमाई करता है, जो सबकी जरूरियात के मुताबिक उनको चीज़ें मुहैया करता है। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं ऐ खुदावंद, जितने भी लोग किसी भी मुश्किल में या परेशानी में हैं, ऐ खुदावंद तू आज उनके साथ साथ हो। तू कादर मुतलक खुदा बाप है, तू उनकी मुश्किलात को दूर कर सकता है, तू अपना रहम भरा हाथ बढ़ाना और ऐ खुदावंद लोगों को उनकी मुश्किलात से, मसाइल से, ऐ खुदावंद परेशानियों से बचाना और छुड़ाना। ऐ खुदावंद खास तौर पर दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, खा वो घरों में हैं, खा अस्पतालों में हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर शिफा याब करना, उनकी सारी बीमारी को, सारी कमजोरी को, हर तरह के इन्फेक्शन को, कोई भी ऐ खुदावंद किसी भी तरह की बीमारी है उसको दूर करना और ऐ खुदावंद मुकम्मल शिफा बख्शना, क्योंकि तेरे पास वो ताकत है, तू बीमारों को अच्छा कर सकता है, शिफा सिर्फ तुझी से आती है। ऐ खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो दुखी हैं, गमजदा हैं, परेशान हैं। ऐ खुदावंद खुदा बाप खास तौर पर उन मुल्कों के लिए दुआ करते हैं जहाँ पर लोगों की जिंदगियाँ खतरे में हैं, वहाँ पर तू ऐ खुदावंद अमन और सुकून पैदा कर, क्योंकि अमन का शहजादा तू ही है, तू कादर मुतलक खुदा है। वहाँ पर अमन और सुकून हो, लोग ऐ खुदावंद खुदा बाप पीसफुली अपने अपने घरों में रह सकें, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो बीमार हैं, ऐ खुदावंद उनकी तमाम ज़रूरियात के मुताबिक उनको तू फराहम कर। ऐ खुदावंद खुदा बाप खास तौर पर दुआ करते हैं जिनके प्यारे ऐ खुदावंद उनसे छिन गए हैं, ऐ खुदावंद तू उनके दिलों को तसल्ली बख्श, तो उनको इत्मीनान बख्श। ऐ खुदावंद तू गवर्नमेंट्स को, लोगों को, जो अथॉरिटीज़ हैं, ऐ खुदावंद खुदा बाप तू उनको विजडम दे, अकल समझ और दानाई दे, ताकि वो लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। ऐ खुदावंद उन मुल्कों के लिए भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है, ऐ खुदावंद तेरे नाम से लोगों को सताया जाता है, तू वहाँ पर अपने लोगों को संभाल, तू ही उनके साथ हो, तू ही उनको हिम्मत और ताकत और हौसला देता कि ऐ खुदावंद तेरे नाम के लिए खड़े रह सकें। इस तरह से दुआ करते हैं आवाज़ रेडियो की सारी टीम के लिए जो हर हफ्ते इस प्रोग्राम को पेश करती है, तेरा कलाम बहुत से लोगों तक पहुँचाती है, तेरा पैगाम बहुत से लोगों तक पहुँचाती है। खुदावंद खुदा बाप इनको, खानदानों को, एक एक को अपनी बरकतों से मालामाल करना। ऐ खुदावंद खुदा बाप आवाज़ रेडियो के साथ हो, सारी मैनेजमेंट के साथ हो, सारे स्टाफ के साथ हो, जो प्रोग्राम भी यहाँ से पेश किया जाए खुदावंद वो लोगों की बेहतरी और बहबूदी के लिए हो। और ऐ खुदावंद खुदा बाप इस आवाज़ रेडियो को बड़ी बरकत दे, ऐ खुदावंद ये बड़े फले फूले और ऐ खुदावंद इसी तरह से तरक्की करता रहे। ये सभी कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
0: आमीन। दोस्तों आइए हम खुदावंद की प्रशिस्त के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनते हैं, और उसके लिए मैं डैनियल से दरख्वास्त करूंगी कि हम सबके लिए वो नज़म जो उन्होंने तैयार की है सबकी बेहतरी के लिए, सबकी इंकरेजमेंट के लिए वो नज़म पेश करें।
2: मेरी नज़म है जो बीत रही मसीह में, जो बीत रही मसीह में दिलो जान से मैं बताऊं, जो बीत रही मसीह में दिलो जान से मैं बताऊं, जो खुशी मिली मसीह में मैं उसी के गुण ही गाऊं। मेरे दिल की धड़कनों का, मेरे दिल की धड़कनों का है पैगाम मसीह तक पहुंचे, मैं मसीह का एलची हूं, ये सलाम मसीह तक पहुंचे। उसे बंदगी मैं समझूं, उसे बंदगी मैं समझूं जो मसीह के काम आऊं, जो खुशी मिली मसीह में मैं उसी के गुण ही गाऊं। मेरी जिंदगी ने अक्सर बड़े गम जो है उठाए, मेरी जिंदगी ने अक्सर बड़े गम जो है उठाए, कहीं हो गए अंधेरे कभी जी भी डगमगाए। वो चिराग है वफा का, वो चिराग है वफा का है अंधेरे जगमगाए, जो खुशी मिली मसीह में मैं उसी के गुण ही का। आखिरी शेर है, मेरे दिल के आईने में, मेरे दिल के आईने में जो मकाम है मसीह का, मेरे दिल जिगर और लब पर बस नाम है मसीह का। मेरी आरजू यही है मैं मसीह के ही नगमे गाऊं, जो खुशी मिली मसीह में मैं उसी के गुण ही गाऊं, जो बीत रही मसीह में दिलो जान से मैं बताऊं, जो खुशी मिली मसीह में मैं उसी के गुण गाऊं। शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया। आइए एक गीत सुनते हैं, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, छम छम की बरसात, छम छम की बरसात। बहुत ही प्यारा गीत है और धुन बहुत प्यारी है, और हम ये इसमें एक दरख्वास्त है खुदावंद से कि अपने रूह का मसा हमें दे, कि बहुत ज्यादा उसका रूह हमारी जिंदगी में काम करे। तो आइए गीत सुनते हैं, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का।

0: आइए खुदावन के कलाम मुकद्दस की तफसील सुनते हैं जो हमने उर्दू और पंजाबी जुबान में सुनी थी, और उसके लिए मैं अभी कलीम से दरखास्त करूंगी कि कलाम का जो हिस्सा खुदावन ने उनको दिया है वो हम सब के लिए बयान करें। जी कलीम।
1: मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज उसने फिर मुझे मौका बख्शा है कि मैं चंद मिनट आपसे कलाम मुकद्दस की बातें शेयर कर सकूं। आज का जो हवाला हमने लिया है वो नए अहदनामा में रोमियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 14वां बाब और उसकी पहली 12 आयात। अभी हमने इन आयात की तलावत सुनी है और अब हम चंद मिनट इन आयात पर गौर करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने आज हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। समईन बशमोल रोमियों के खत और बाकी भी जितने खतूत हैं उनमें मुकद्दस पौलुस रसूल हमें रोज़मर्रा मसीही जिंदगी के बहुत से रहनुमा असूल बताता है और बयान करता है कि हम किस तरह कलीसियाओं में, खानदानों में, चर्चेस में, इस दुनिया में किस तरह अपनी जिंदगी बसर करें। पौलुस रसूल ने जब रोमियों के नाम ये खत लिखा तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी एक वजह है, रीजन है कि पौलुस रसूल ने ये सारी बातें रोमियों की कलीसिया को लिखी। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद यीशु मसीह ने जो रसूल मुकर्रर किए थे और उसके अलावा पौलुस रसूल जो पहले साउल था और बाद में खुदा ने उसको दमिश्क की राह पर चुना और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, ये सारे लोग, सारे रसूल खुदा के कलाम की और निजात के पैगाम की जो सिर्फ यीशु मसीह के जरिए ही मुमकिन है, तबलीग और मनादी करते थे। और उस वक्त ना सिर्फ यहूदी बल्कि बहुत से दूसरे जिनको हम जेंटाइल्स कहते हैं वो भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे थे। और मसीही ईमान कबूल करने के बाद तमाम यहूदी और जेंटाइल्स एक ही जगह पर इकट्ठे रहते और बतौर मसीही अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं, जेंटाइल्स और ज्यूज, ये अपना पास्ट, अपनी माजी की चीजें भी, अपने अबाउजदाद की रसूमात और अकदार उनको भी कैरी करते थे, और इसके बावजूद के रसूल लोगों को मसीही मुआशरे में इकट्ठे जिंदगी बसर करने की तरबियत देते थे, फिर भी उनके अंदर इख्तलाफात मौजूद थे। और ये जो मुख्तलिफ लोग थे जो मसीही ईमान कबूल करते थे, गो के वो इकट्ठे रहना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके आपस में बहुत सारी चीजों पे, रसूमात पे उनके इख्तलाफात थे। और आज का जो पैसेज है उसमें हमें इस तरह की चीजें मिलती हैं और उनके मतलब हमें सिखाया गया है कि हम इस सिचुएशन में कैसे अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं और किस तरह हमने अपनी मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इस 14वें बाब के आगाज से ही हमें अंदाजा होता है कि ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इस बात का वो इजहार कर रहे हैं। मसलन पहली दो आयात हम देख लेते हैं, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को एतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। यहाँ पे कमजोर ईमान वाले वो लोग हैं जो अभी नए नए मसीही थे, जिन्होंने मसीही ईमान को अभी कबूल ही किया था, बहुत ज्यादा देर उनको नहीं गुजरी थी और उनको बहुत सारी चीजों का इल्म भी नहीं था। तो पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि ऐसे लोगों को शामिल करो और उन पर तनकीद ना करो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से मैच्योर हैं और वो ईमान में काफी गहराई को हासिल कर चुके हैं और उनके लिए आसान है कि वो क्या खाएं, क्या पिए और उनको अपने ईमान को साबित रखने के लिए किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं है। और इसी तरह ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही थी कि हम क्या खाएं, अगर मसीही हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा लिबास पहनना चाहिए, कौन से त्यौहार मनाने चाहिए, कौन से त्यौहार बेहतर हैं, कौन से त्यौहारों को किस तरीके से मनाया जाए। और इस सारी सूरत हाल में पौलुस रसूल इस बात को समझता है कि इस तरह جو مسیحی معاشرے کے اندر ایک اتحاد ہے، یونٹی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور جب چرچز میں، کلیسیاؤں میں اتحاد نہ ہو تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی صورتحال کو بھانپ کر پولوس رسول نے رومیوں کے نام یہ خط تحریر کیا۔ اس حوالے میں تین چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم اس پیسج میں سیکھتے ہیں کہ ہم بطور مسیحی اپنے کانشیس، اپنے ضمیر کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جو ہمارا کانشیس ہے اس کا جو کرسچن کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ایتھیکل اور مارل گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر آپ کا ایمان قائم ہے۔ کلام مقدس میں، نئے اور پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت ساری چیزیں، ہدایات ملتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جیسے موسیٰ کو خدا نے 10 احکامات دیے تھے جو آج بھی جن کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانشیس ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہم چوری کریں، ہم کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیں، ہم عیب جوئی کریں اور ہم برے کاموں میں اپنا وقت صرف کریں، بلکہ بطور مسیحی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم مسیحی ایمان کو قائم رکھتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے کام سر انجام دیں۔ جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ برابر زندگی کے کام سر انجام دیں۔ جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم

0: फजल के तहत हैं, जहां हमें मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए कहा जाता है, जहां हमें एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने का हुक्म दिया जाता है, जहां हमें दूसरों की वेलफेयर का दर्स दिया जाता है। और ये ज़रूरी है कि हम हर वक्त इस बात को जहन में रखें कि हम फजल के तहत हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीही ज़िंदगी को मोहब्बत और एतमाद और एहतराम के साथ गुजारें। तीसरी और आखिरी बात इस हवाला में ये बताया गया है कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाना और उसको गलत साबित करने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि जजमेंट खुदा की तरफ से है और जजमेंट खुदा ही कर सकता है। इस हवाले की 14वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्त अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। तो मेरे अजीजों, हम जजमेंट पास नहीं कर सकते। पौलुस रसूल ने हमें सिखाया है कि जब हम मसीही मुआशरे में, मसीही कलीसिया में, मसीही खानदानों में और मसीही कबीलों में जिंदगी बसर करते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को पेश कर सकते हैं, ताकि हम ना तो किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, ना जजमेंटल हों, ना किसी को हकीर जाने, सबको बराबर जाने, मसावात और भाईचारे का प्रचार करें, इत्तेहाद और यूनिटी को कायम रखें और कलाम मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की सही और कोशिश करते रहें। और मेरे अज़ीज़ों, कोई ये नामुमकिन बात नहीं है। अगर कोई नामुमकिन बात होती, पौलुस रसूल हमें इस तरह का दर्स ना देता। पौलुस रसूल ने सारी बातें बहुत आसान करके, क्लियर करके हमें बता दी हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एक मुआशरे में, मसीही मुआशरे में हम कैसे रह सकते हैं। और ये सिर्फ मसीही मुआशरे की बात नहीं है, पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के लिए ये बात सादर आती है कि हम सब लोग इन बतौर इंसान जब मुआशरों में रहते हैं, तो हम किसी को हकीर नहीं जान सकते, हम किसी को अपने से कमतर नहीं समझते, या किसी को एक दूसरे से बड़ा और मोतबर नहीं जानते, बल्कि खुदा की नज़र में सब लोग बराबर हैं और बतौर इंसान हम एक दूसरे के ऊपर जजमेंट नहीं कर सकते। जजमेंट करना खुदा का काम है। और हम किस तरह ये अच्छी मसीही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? हमारे पास एक बहुत शानदार और उम्दा मिसाल है। पौलुस रसूल अपने ख़त में लिखता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यसु मसीह का था। चुनाचे ये वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं, और जिस तरह यसु मसीह ने हमें सिखाया है, उस तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो यकीनन हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।
1: खुदा का शुक्र है कि उसने अपने बंदों को चुन लिया है कि वो इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से खुदा उनके कलाम को हमें अच्छी तरह समझा देते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आपने अभी तक अपने रेडियो को ट्यून किया हुआ है और आखिर तक अपने इस प्रोग्राम को सुना है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो मैं आखिर में रॉबर्ट से दरख्वास्त करूँगी कि दुआ के जरिए से इस प्रोग्राम को ख़त्म करें और फिर हम आखिरी गीत सुनेंगे।
2: खुदा तेरा शुक्र करते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए, तेरे पाक रूह की मदद के लिए। और जो कुछ हमने मांगा, हमने वो पाया। और दिली दुआ है कि खुदावन आज जो भी यसु नासरी की कुदरत के बारे बातचीत हुई कलाम के सिले से, कि उसको गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है, शफा देने का भी इख्तियार है। आज की बातों पे लोगों को गौर करने की ताकत देना, ताकि वो तुझे जिंदा खुदा को जाने और तेरी कुर्बत में आए और सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और आज के प्रोग्राम से 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल खुदावंद लोगों को मिले। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद रेडियो आवाज के लिए, जिसके वसीले से आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों को सुनने को मिला, वो सबको बरकत का बायस हो आज का प्रोग्राम। और ये सब कुछ हम मांगते हैं यसु नासरी इब्ने खुदा के नाम से।

0: सुन ले और कबूल कर ले। आमीन।
1: आमीन। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, और खुदा ने चाह तो अगले हफ्ते फिर आपसे इसी जगह इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। आइए आखिरी जबूर सुनते हैं। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा, मैं सदा ते बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। आइए खुदा के मुबारक नाम को जलाल देते हैं और उसके तारीफ में ये सबूत सुनते हैं।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
11: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.

गए हुसन वाले हटनी जरा देख ले तू नजर पलटनी बल्ले नी बच मोड़ तो बच मोड़ तू बच मोड़ तो बल्ले नी बच मोड़ तो मैं सके तेरी तोड़ तो बल्ले नी बच मोड़ तो।

सुबह सवेरे मैंने सोचा कि चले ब्रेकअप सॉन्ग लगा दूं, बिकॉज सुबह सवेरे ब्रेकअप कर दिया. व्हाट इज शी थिंकिंग ऑफ, व्हाट इज शी थिंकिंग ऑफ. इट्स अवर सेवन कम्युनिटी रेडियो, दिस इज कैफे वर्ल्ड विद मी योर होस्ट अली, हियर विद यू अंटिल 11 o'clock. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, वेलकम टू द शो. गेट इन टच विद मी हियर इन द स्टूडियो ऑन 0238198072. दैट्स 0238198072, और यू कैन व्हाट्सएप द स्टूडियो. एंड इफ यू हेड ओवर टू फेसबुक, सर्च फॉर अवर सेवन साउथहैम्पटन, जॉइन मी ऑन द page there and drop me a message there as well. Be great to hear from you guys. It's Cafe Awaz with me, your host Ali, here with you until 11 o'clock. Right guys, do let me know how you are getting on, and what is your plans for the rest of the week. Awaz Fan Community Radio, this is Cafe Awaz, and let's take you to the next track, another remix track I've got ready for you today, and this is Bade Bazaar. Let's take you to this one, and I'll see you straight back after this. Don't go away, more great music coming up.

0: So we need a new jingle, Ellie. We've got to get in that studio and produce a new jingle.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Awaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: This is Shweta Subram and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.
1: लापरवाही.
2: अंकन, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hello, I'm Sapia Cole. You are listening to Avaaz FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Yang Yingwu of China.
3: Friend of the show.
2: She's one of the 900 that listens. She's big shout out to Yang.

0: How do you say it? A was or a was?
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hi, this is Abbas Hassan and keep listening to Awaaz FM.

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
10: आपकी आवाज आपका रेडियो आपके शहर आवाज एफएम

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: I know. How do we get Finnish listeners?
3: I don't know.

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Life को अटकना नहीं आता, तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती ज़िंदगी का साथ दो, ज़िंदगी चले बिना रुके.

0: Sahara Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, where heritage speaks volumes in the form of music. Combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: He was going to cry, just said. That gentleman was really horrible.
4: He was really getting up my nose.
3: He stole my dinner money.

0: I've had a couple of mates.
1: Shall we do some adverts and then come back?
0: Yeah,
1: right, so...
0: Cut me off there, didn't he?
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Awaz FM 99.8, making Southampton great.
5: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital. Where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing tunes.

0: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m, only on Ours FM.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
0: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@oursfm.co.uk.
4: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
5: हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने, हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने। वाह वाह, यही बोलना था मेरे को।
6: एक पल की लापरवाही।
7: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: I know from the public reaction that we've been greatly missed, Simon.
4: We certainly have, that's for sure.
3: Who else are you going to listen to?

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव responsibly. फोकस ऑन द रोड।
2: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: This Ghana Mario Sunday night. My favourite Ghana Mario.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम
1: एक पल
0: निकले।
1: की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

0: Bonjour, c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Awaz
1: एक पल
0: FM.
1: की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने, वाह वाह यही बोल रहा था मेरे को।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: Hello there, Ali. It's Malcolm here. I've actually got Awaz FM on my digital radio now. Can you hear it playing in the background? Thoroughly enjoyed speaking to my old friend Rahir Baines this morning. Thank you very much.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
5: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोबी.
6: अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम सलाम.
6: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
5: हां जी, शुक्रिया.
6: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ एफएम. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से. मेहरबानी तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं. तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है.
5: और अजमल साहब, इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
6: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
5: थैंक यू वेरी मच.
6: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आज डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा. और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला. और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे. इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे. बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
5: थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.
6: आई लव यू ऑल.

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From Kingston to the Nile, join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa blended with music of the Caribbean, combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.